तुम आ जाना भगवन, प्लीज वॉक इन और कम माई गॉड। मैं द्वार खोल कर बैठा हूँ, आई हैव केप्ट द डोर्स ओपन एंड आई एम सिटिंग फॉर यू। दैट्स अ लिटरल ट्रांसलेशन। इट कुड बी मोर क्लोजली सेड लाइक आई हैव ओपन द डोर्स ऑफ माई हार्ट, ओ गॉड प्लीज वॉक इन। माई सोल इज लोनली विदाउट यू, ओ गॉड प्लीज वॉक इन। एंड सो गोज कौशिकी चक्रवर्ती फॉर अस, तुम आ जाना भगवान राग भैरवी विद सौमिक दत्ता ऑन द सारोद, विजय घटे ऑन द तबला, प्रोमिता मुखर्जी ऑन द हारमोनियम एंड अल्ला राखा यमीन खान ऑन द सारंगी। द नेक्स्ट पीस, आई एम काइंड ऑफ मूविंग माई पीसेज एज आई हर्ड रिक्वेस्ट फ्रॉम वन पर्सन। इट्स जनरली हार्ड फॉर मी टू पुट इन रिक्वेस्ट बिकॉज आई प्रिपेयर द शो एंड कम इन, आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ सीडीज और I almost have nothing. Most of my show is prepared at home way before, but I have managed to move things around. Karen was asking for a flute piece. So the next piece that we are going to be hearing is going to be Baro Krishnaya with V.K. Raman on the flute. Raman renders it actually in Rag Mand. This song is sometimes also rendered in Rag Malika. So what I have is I have two Baro Krishnayas back to back. V.K. Raman on the flute is going to kick it off with Mand. It's a composition of Kanakadasa. And without any break, I'm just going to go into Sudha Raghunathan, who's going to be singing Baro Krishnaya. But she's going to be singing it in Rag Malika. Again, it's the same composition, Kanakadasa's composition. It's in Adi Talam. But Sudha Raghunathan's rendition comes from an album, Sudha Madhuri. It's an Amudam release. On that piece, she's accompanied by Raghavendra on the violin, Patri Satish Kumar on the mridangam, and Raman on the morsing. This Raman on the morsing is not the same as flute Raman. Two different people. But as I said, I'll let those two songs go back to back. Without further ado, let's start. V.K. Raman, Baro Krishnaya, Mand.